द्वारकवासी श्याम है शिरडी में आए, शिरडी वासी श्याम है परति सत्य साई, बोलो राम साई राम, बोलो सत्य साई राम।